मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,